प्रोपाइटर मोहन कुमार विश्वकर्मा, विकास सदाशंकर, फोन 0656531336, 0656540459, मोबाइल नंबर 9803880384, 9846739।

0: चलिए भाई साहब, रेडी रोलिंग
1: एक्शन।
2: क्यों था तेरे उल्लेख मेकअप नहीं होना है? इधर आओ ना, इधर आइए मेकअप।
0: कट कट कट तेरे तेरे
3: seven go

0: WorldLingo Festivity Offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरु लागू हुने छन्। छिटो बनेकै WorldLink।
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रु 1200 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो भनेकै Willingo.